एको कह कर विचार करते का करना नहीं सुमार। तौल धर्म दया का पूत संतोखता प्रख्या जिन सूत जे को बुझा हुए सचियार तबल उपर किता पार। धरती होर परा होर होर तिस्ते भार तला कमन जोर जी जा तिरंगा के नाव सबना लिखिया बुड़ी कलाम एहो लेखा लिख जाना कोय लेखा लिखिया किता होए। केता तान स्वाले हो रूप केती दात जाने कौन कूता कीता पसाओ एको कवाओ तिस्ते होए लख दरियाओ। कुदरत कामन कहा विचार वारिया न जावा एक बार जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार। असंख जप असंख पाओ असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रह उदास। असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पखसार असंख मौन लिवलाए तार। कुदरत कमन कहा विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद पहावै साई पलीकार तू सदा सलामत निरंकार। असंख मूर्ख हंद कोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गल वड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़े आर कूड़े फिराहे असंख मलेश मल पख खाहे असंख निंदक सिर करह पार नानक नीच कह विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद पावै साई पलीकार तू सदा सलामत निरंकार। असंख नव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कह सिर पार होए अखरी नाम अखरी साला अखरी ज्ञान गीत गुण गा अखरी लिखण बोलण बाण अखरा सिर संजोग बखाण। जिन एह लिखे तिस सिर नाहे जे फुरमाए तिस ते पाहे जेता कीता तेता नाओ विण नावै नाही को थाओ। कुदरत कवन कहा विचार वारिया न जावा एक बार जो तुद पहावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार। प्रिय हथ पैर तंदे पानी धोता उतर सोखे मूत पलीती कपड़ होए दे साबून लईऐ ओह धोए तो प्रिय मत पापा का संग ओह धोपै तो नावै कै रंग पुनी पापी आखण नाहे कर कर करना लह रह जा हो आपे बीजा पे ही खा हो नानक हुक्मी आव हो जा। तीरथ तप दया दत्त दान जे को पावै तिल का मान सुने मने अमन कीता पाओ अंतरगत तीर्थ मल नाओ। सब गुण तेरे मैं नाही कोए विण गुण कीते भक्त न होए स्वस्थ बाणी ब्रह्माओ सत सुहान सदा मन चाओ। कमन सो वेला वाखत कमन कमन थित कमन वार कमन सिरुति माहो कमन जित हुआ आकार। वेल न पाईया पंडती जे होवै लेख पुराण वक्त न पायो कादिया जे लिखन लेख कुरान। थित वार ना जोगी जाना रुत माहो ना कोई जा करता सिर ठीक साजे आपे जाना सोई किब कर आखा किब सालाही क्यों वरनी किब जाना नानक आखण सब को आखा एक दू एक सियाणा वड्डा साहिब वड्डी नाई कीता जा का होवै नानक जे को आपो जाना अगै गया न सो है। पातालां पाताल लख आगासा आगास ओड़ कोड़ कपाल थके वेद कहन एक बात सहस अठारह कहन कतेबा। असलू एक तात लेखा होए ता लिखी है लेखा होए बिना सो नानक वड्डा आखी है आपे जाने आप। साला ही साला हे ती सुरत ना पाईया नदिया तै वाह पवह समुंद न जानी है। समुंद साहा सुलतान गिरह से तीमाल तान कीड़ी तुल ना हो बनी जे तिस मन हो ना विसरह।

को उम्र तान को पूजन तायो कूर क्रिया और ज्यो सब ही जग श्री भगवान को भेद ना पायो। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

को हमारी सगल प्रजा जिने आप सवारी सेवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पलमो बद कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचरा सथूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाना कट कट के पट पट की जाना जब उद करख करा करतारा प्रजा धरत तब देह अपारा जाबा करख करत हो कब हूं तुम मैं मिलत देह तर सब हूं जेते बदन श्रेष्ट सब धारा आप अपनी बूझ उचारा तुम सब ही ते रहत निरालमा जानत बेद भेद आलमा।

श्लोक माला पहला मुसलमान शिव शरीर पर प्रकरण विचार बंदी से जे पावे विच बंदी वेखण को दीदार हिंदू साला ही साला अंदर रूपे अपार तीर्थ नावे रचा पूजा गुरवास बहकार जोगी सुन त्याउन जे त्यालक नाम करतार सुखमूर्त नाम निरंजन काया काकार सत्य मन संतोख पूजा देने के विचार दीदे मंगे से सगुना सोप करे

कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़े कूड़ बैसनहार कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पहनहार।

हनुमान स्नान का जोगल चले पाए। चौकड़ मुँह लड़ाया बैचों के पाए, सिक्का कन चढ़ाया गुरु ब्राह्मण थे।

टिका तय जप माली थान मिले चाखाई अंतर पूजा पड़े कते बासन जम तुर का छोड़ी।

0: की फतेह, वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। पौड़े वड्डे कियां
1: वड्डियां।

गावे गुंग यत्न करै तौ पी सुर भंग कह पिंगल पर्वत पर भवन नहीं हो तो उस गवन करतार करना मैं दीन बेनती कराए नानक तुमरी कृपा तरह संग सहाय सो आवै न चीतो जो बहराई त्यासो प्रीतो बलुआ के ग्रह भीतर।

महान लोग मतलब हो याहू जुगत बिहाने कई जन्म हो नानक राख ले हो आपन कर कर्म हो तू ठाकर तुम पहे अरदास हो जियो पिंड सब तेरी रास तुम बात पिता हम बारक तेरे तुमरी कृपा महसूस।

मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनहै, मिथ्या हस्त पर दर्प कोहिर है, मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रै रूपादु, मिथ्या रसना भोजन अनसवादु, मिथ्या चरण पर बकार को तावै है, मिथ्या मन पर लोभ लुभावै, मिथ्या तर नहीं परोपकारा, मिथ्या बातलेत बिकारा, बिन बूझे मिथ्या सपै सफल देहे, नानक हर हर नाम लय बिरति साक्त की आरजा, सात बिना कह हो सुचा मृथा नाम, बिना तन अंध मुख आवता कह दुर्गंध।

ब्रह्म दाता है, जे प्रसाद उसको न पहुंचाए मन सा सा सिमरो प्रभु उच्चे, जे प्रसाद पाई दुर्लभ दे हे नानक तां की भगत करे हे, जे प्रसाद का भूखन पहरी जाए मन ते सिमरत क्यों आरस की जाए, जे प्रसाद असब हस्त असवारी मान तिस प्रभु को कभु नमसारी, जे प्रसाद भाग मिलख तरा राख प्रोय प्रभु अपने मना,

ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म ज्ञानी एक उपरयास, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार माह, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं धंधा, ब्रह्म ज्ञानी लेतावत बंदा, ब्रह्म ज्ञानी कह हो सुपला, ब्रह्म ज्ञानी सफल फलाओ, ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जग पै सगल संसार, ब्रह्म ज्ञानी कै एक रंग, ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभ संग, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परिवार, ब्रह्म ज्ञानी सदा सत जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहंग बत्यागत, ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदा आनंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता, ब्रह्म ज्ञानी कै हुए अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी जिस करै प्रव्याप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई आए, ब्रह्म ज्ञानी को बाल बल जाय, ब्रह्म ज्ञानी को खोजै महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे, ब्रह्म ज्ञानी का सगल मन माहे, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जान भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा देसो, ब्रह्म ज्ञानी का कथे न जाय अध्याखर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर,

जिसका ए मन पार ब्रह्म का निवासो तिसका नाम सत रामदासो आत्म राम तिस्नदरी आया दास दसंतर पाए तिन पाया सदा निकट निकट हर जानु सो दास दुर्गा प्रवाणु अपने दास को आप कृपा कराए तिस दास को सब सो जी पराए सगल संग आत्म दासु ऐसी जुगत नानक रामदासु पव की आज्ञा आत्म हिता वै जीवन मुक्त सो कहावै तैसा हर तैसा उस रोग सदा अनंत है ना बेयोग ऐसा स्वंत ऐसी उस माटी त

कई कोट पर द्रव को हृहय कई कोट पर दुख न करहय कई कोट माया श्रमाहे कई कोट परदेश प्रमाहे जित जित लभ हो तित तित लगनाओ नानक करते की जाना करता रचना कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राजे रस भोगी कई कोट पंखी सर्प पाए कई कोट पाथर बिरख निप जाए कई कोट पावन पानी बैसंतर कई कोट देश भूमंडल कई कोट शशियर सूर नक्षत्र कई कोट देव दानव इंद्र सिर छत्र सगल समगरी अपना इंसु धारय नानक जिस जिस भावै तिस तिस नारय कई कोट राजस तामस सातक कई कोट वेद प्राण सिमरत अर्शास्त कई कोट किए रत्न समुद कई कोट नाना प्रकाश जानते

अष्टपदी जिसका अंतरराज मांडो सुनरपति होवत स्वानो जो जन है मैं जोबन बंत सो होवत विष्टा का जंत आपस कहो कर्म बंत कहावे।

नाना चलत करे खिन माहे, पूर रहे पूरन सब ठाए। नाना बिद कर बंत बनाई, अपनी कीमत आपे पाई। सब घट तिसके सब तिसके ठाओ, जप जप जीवै नानक हर नाओ। नाम के धारे सगले जंत, नाम के धारे खंड ब्रह्मंड। नाम के धारे सिमरित वेद पुराण, नाम के धारे सुनन ज्ञान ध्यान। नाम के धारे आगास पाताल, नाम के धारे सगला आकार। नाम के धारे पुरिया सब भवन, नाम कै संग उदरे सुन श्रवण। कर कृपा जिस अपने नाम लाए, नानक चौथे पद मह सो जन गत पाए। रूप सत जा का सत स्थान, पुरख सत केवल प्रधान। करतूत सत सत जा की बाणी, सत पुरख सब माहे समाणी। सत कर्म जा की रचना सत, मूल सत सत उत्पत। सत करनी निर्मल निर्मली, जिसे बुझाए तिसे सब भली। सत नाम प्रभ का सुखदाई, विश्वास सत नानक गुरते पाई। सत बचन साधु उपदेस, सत ते जन जाकर हृदय प्रवेश। सत निरत बूझा जे कोए।

मन बंछत नानक फल पाए संग न चालस तेरा तना तू क्याल पटाव है मूर्ख मना सौत मीत कुटाम्बार बनता इनते कहो तुम कवन सनाथा राज रंग माया विस्थार इनते कहो कमन छुटकार आस हस्ती राथ सुवारी झूठा डंफ झूठ पासारी जिन दिए तिस बुझै ना बेगाना नाम बेसार नानक पछताना गुर की मत तू ले आने भगत बिना बहो डूबे सियाने हर की भगत करहो मनमीत निर्मल होए तुम्हारो चीत चरण कमल रख हो मन माहे जन्म जन्म के किल बिख जाहे आप जप हो अबरा नाम जपाव हो सुन तो कह तो रहत गत पाव हो सार भूत सत हर को नाओ सहज सभाए नानक गुण गाओ गुण गावत तेरी उतर समैल बिन सजाए हम बिख फैल होहे चिंत बसा सुख नाल सास ग्रास हर नाम संभाल छाड़ सियान सगली मना साध संग पावह सच तना हर पूंजी संच करहो व्यवहार इहा सुख दरगह जयकार

फिरत फिरत प्रभ आया परया तो सरनाए नानक की प्रभ बेनती अपनी भगती लाए अष्टपदी जाचक जन जाचा प्रभदान कर कृपा देव हो हर नाम साध जना की मागो तुहूरा पार ब्रह्म मेरी सरदा पूरा सदा सदा प्रभ के गुण गावो सास प्रभ तुमह त्यावो चरण कमल स्यो लागै प्रीत भगत कराओ प्रभ की नित नीत एक ओट एको आधार नानक मांगा नाम प्रभ सार प्रभ की दृष्ट महा सुख होए हरस पावा बिरला कोए जिन चाख्या से जन तृप्ताने पूर्ण पुरख नहीं डोलाने सुबर परे प्रेम रस रंग उपजा चाओ साध कै संग परे सरनान सब त्याग अंतर प्रगास आन दिन लिवलाग बड भागी जपया प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए सेवक की मनसा पूरी पही सतगुर ते निर्मल मत लई जन को प्रभ होयो दयाल सेवक कीनो सदा निहाल बंधन काट मुक्त जन पहया जन्म मरण दुख भ्रम गया इश पुनी सरदा सब पूरी रब रहया सद संग हजूरी जिस का सा तिन लिया मिलाए नानक भगती नाम समाए सो क्यों बिसरा जे काल न पाना सो क्यों बिसरा जे किया जाना सो क्यों बिसरा जिन सब किश दिया सो क्यों बिसरा जे जीवन जिया सो क्यों बिसरा जे अगन मह राखा गुर प्रसाद को बिरला लाखा सो क्यों बिसरा जे व्यक्ति काढ़ा जन्म जन्म का टूटा गांडा गुरपूरा तत् है बुझाया प्रभापना नानक जन त्याया साजन संत कर होए हुकाम त्याग जप हो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पाव हो आप जप हो अवरा है नाम जपाव हो भगत भाई तरिया संसार बिन भगती तन होसी शार सर्ब कल्याण सुख निद नाम बूढ़ जात पाए विश्राम सगल दुख का होवत नास नानक नाम जपहो गुण तास उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ मंतन अंतरे ही सुवाओ नेत्र हो पेख दर्स सुख होए मन बिगसा साध चरण तोए भक्त जना कै मंतन रंग बिरला को पावै संग एक बस्त दी जय कर मया गुर प्रसाद नाम जप लया ताकि उपमा कही न जाए नानक रहया सर्ब समाए प्रभ बख्शंद दीन दयाल भगत वचल सदा कृपाल अनाथ नाथ गोबिंद गोपाल सर्ब घटा करत प्रतपाल आदि पुरख कारण करतार भगत जना के प्राण आधार जो जो जपै सो होए पुनीत भगत भाए लावै मन हीत हम निर्गुण यार नीच अजान नानक तुमरी सरन पुरख भगवान सर्ब बैकुंठ मुक्त मोख पाए एक निमख हर के गुण गाए अनेक राज भोग बड़ियाई हर के नाम की कथा मन पाई बहु भोजन का प्रसंगीत रसना जपती हर हर नीत भली सो करनी शोभा तनवंत हृदय बसे पूर्ण गुरमंत साध संग प्रभ दे हो निवास सर्ब सुख नानक

का तब चेतर गोपत कैस पूछत लेखा, जब नाथ निरंजन गोचर गादे, तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे। अपने आप ही अचरजा, नानक अपन रूप आप ही उपरजा। जह निर्मल पुरख पुरख पत होता, तह बिन मैल कहो क्या तोता। जह निरंजन निरंकार निर्वाण, तह कौन कौ मान कौन अभिमान। जह स्वरूप केवल जगदीश, तह छल छिद्र लगत कहो कीस। जह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावै, तह किसै भूख कमन तृपतावै। करन करावन करना हार, नानक करते का नाहि सुमार। जब अपनी शोभा अपन संग बनाई, तब कमन माए बाप मित्र सुत भाई। जह सर्ब कला पह प्रवीण, तह वेद कतेब कहा को चीन। जब अपने आप उर धारा, तो सगन पसगन कहा बिचारा। जह अपन ऊच अपने आप नेरा, तह कौन ठाकुर कौन कही अचेरा। बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद, अपने नानक अपनी गत जन हो आप। जह शाल छेद भेद समाया, ऊहा किसा व्यापत माया। पसको आप है आदेश, तेह गुण का नाही प्रवेश। जह एक है एक एक भगवंता, तह कौन चिंत किस लागै चिंता। जह अपना आप पति यारा, तह कौन कथा कौन सुनन हारा। बहु बेअंत ऊच ते ऊचा, नानक आपस कौ आप है पहुचा। जह आप रचियो प्रपंच आकार, तेह गुण मह कीनो विस्थार। पाप पुन तह पई कहावता, को नरक को स्वर्ग बंछावता। आल जाल माया जंजाल, हूं मैं मोह भरम पै भार। दुख सुख मान अपमान अनक प्रकार कियो बखियान। अपन खेल आप कर देखै, खेल संकोचै तो नानक एकै। जह अवगत भगत तह आप।

दरगह निबह खेपत मारी एका टेक रखो मन माहे नानक बहर ना वह जाहे तिस्ते दूर कहा को जाए उबरा रख नहार त्याए निरपौ जप सगल पौ मिटा प्रभ कृपा ते प्राणी छुटा जिस प्रभ राख तिस नाही दुख नाम जपत मन होवत सुख चिंता जाय मिटा अहंकार तिस जन कौ कोई न पहुचन हार सिर उपर ठाडा गुर सूरा नानक ताके कारज पूरा मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट दर्शन पेखत उदरत श्रेष्ट चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप धन सेवा सेवक प्रवान अंतर जामी पुरख प्रधान जिस मन बसा सो होत निहाल ताके निकट नावत काल अमर पय अमरा पद पाया साध संग नानक हर त्याया सलोक ज्ञान अंजन गुरदिया ज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन प्रगास अष्टपदी संत संग अंतर प्रभ डीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समिगरी

0: एक एक कोर ला रही है।
1: अगे तक शुरू करो, अगे तक जाओ जी, अगे तक जाओ।
0: नहीं नहीं अगे तक जाना, हाँ दो दोस्त मार लिए भाई।
1: चलो ठीक ठीक Everybody, 9 to 12 years. 9 to 12 years, come in the front over here. 9 to 12 years. Push nahi karna kisi ne. Your seating arrangement is being done 9 to 12 years only. If your 9th birthday was today, you are still 9 years. Okay? 9 to 12 years, so usi jagah dene lage hain, bahut jaldi baithne waste. Wait, wait, wait, again nahi jana bete. Listen karo bete. Haan ji, everybody here, 9 to 12 years. तो वीर जी अपना 13 नंबर लाओ थे। नहीं नहीं फिर मिक्स नहीं होनी चाहिए ना, मैं पूछ लांगा उन्होंने। 13 तो उपर वाले नहीं रखने पेपर। वीर जी आ की है, देखो आ की है, विचकार की है। अरे निकाल दो तीनों, बहुत लागे ने, की है प्रॉपर रोज होनी चाहिए यार। एक की है, ये रोज भी बहुत लागे है, उठा दो, बहुत विचकार लागे है। वेट वेट वेट एवरीबडी, गो बैक गो बैक। वेट एवरीबडी, गो बैक प्लीज। बेटा इतने आओ, वी आर गेटिंग रेडी फॉर यू, जस्ट जस्ट वन मिनट। ओके, ओनली 9 टू 12 इयर्स, कम हियर, कम कम कम, लाइन अप ओवर हियर, लाइन अप ओवर हियर। 9 टू 12 इयर्स ओनली। ओके, you will take pick up a paper and sit on the seat over there where the paper is. 1 2 Malar bithana shuru karo. 3 4 5 Oh, wait let them sit first. First row everybody in the first row, don't pick up anywhere. Beta utthe jao, go there facing that side yaar. Malar us paas facing that side bachan. Guys, guys, face that side. Face that side. Guys, everybody wait. Proper chonkli marka beta jani. Not now. First, you are sitting in the wrong place. I sent you first. I told you come here. Come front. Chal theek hai. But only for wo baki bache udhar baithenge sare. पंजी पंजी वेट करो, पंजी वेट करो, पंजी वेट करो प्लीज। बेटा बेटा इधर आ, इधर आ, इधर आ। पहला फर्स्ट रो कंप्लीट करो। हाँ जी बेटा चलो जा, जाओ। 9 से 10
2: साल के बच्चे,
1: 9 से 12 ओनली 9 से 12 इयर्स। हाँ जी मला रख के बिठाना यार, सेकंड रो नहीं। पिक अप द पेपर एंड सिट इन द प्लेस ऑफ द पेपर, पिक अप द पेपर, पेपर उठा के बैठा। ओके गो, 5 पीपल नाउ, 1 2 3 4 5 पांजी पांजी, 5 एट अ टाइम भेज जाओ। पहले ओनली 9 टू 12 इयर्स हियर, ओनली 9 टू 12 इयर्स, 13 एंड अबव ऑन दैट साइड, ऑल 13 एंड अबव ऑन दिस साइड, ओनली 9 टू 12 इयर्स। Antarvir ji is there, he's going to make you sit 13 and above. Okay, guys listen, sare bolo Vaheguru. Vaheguru. Anybody under 9 years, line up here, under 9 years. Under 9 years. Anybody under 9 years? पंजी ओ पीछे पंजी, रॉन्ग जगह था। 9 से 12 9 से 12 इयर्स गाइस, देख देख पंथ की राज करेगा, राज करेगा, बोले सोनिहाल। Guys, only 9 to 12 years over here. No books are... 9 to 12 is here. So anybody in this group, you guys are sitting too near. बहुत ज़्यादा नहीं. मेरी बहुत लागे बच्चे सारे. Please spread out. और बच्चे, तो सी wrong जगह बैठो ताले. बच्चे रो ही नहीं रही. मेरे ख्याल चलो थोड़ा जगह कटानी मानी है. वीर जी, एक कितना दर्जन सारे लागे बैठे हुए ने. Everybody pick up your papers and stand up. Everybody stand up. 13 and above. 13 and above जी.
0: 13.
1: Stand up. Okay. First row. मेरे वाल देखो बेटा, खड़े हो जाओ. इधर मुंह हो, एक स्टेप खाली तुझे बेटा, सीधे एक लाइन जोड़नी चाहिए. ओके, सेकंड रो आओ. दो ही ने सेकंड रोच. हाँ बेटा, बस सीधे रहो, बस थोड़ा इधर रहो. हाँ, खड़े रहो, खड़े रहो. थर्ड रो आओ बेटा, थोड़ा बस बस बस, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, बस बस बस बस बस बस, इतनी. फेस दिस साइड. फोर्थ रो बेटा, थोड़ा इधर, बस इस जगह. फिफ्थ रो थे इस जगह बेटा, इधर मैच करो. हाँ, थोड़ा इधर राइट हो, थोड़ा इधर राइट, बस. एंड फिफ्थ रो, बैठ जाओ. No, anybody 17 and above over here, raise your hand. 17 years and above. हाँ जी, तो सीधे आ जाओ साइड से. तेरा पेपर वखरा है. You'll get a different paper. 17 and above. इतने बैठ जाओ. टोला के आराम ना बैठ जाओ. दूर दूर, दूर दूर, away from me. Anybody else 17 years and above? 17 years and above कोई हो रहा थे? Anybody 17 years and above? No, right? Only two people. ठीक है. जेडे बच्चे गला करेंगे उन्होंने माइनस 10 मार्क्स हो जाएंगे. ओके, नो नोबडी कैन कीप अ बुक और अ सेल फोन. इफ यू हैव अ सेल फोन, टर्न योर सेल फोन ऑफ. टर्न योर सेल राइट, टर्न योर सेल फोन ऑफ. एंड If anybody has a bag, pick up your bag and leave it on the back side. You can't keep a bag here. Beta, beta, are you listening? I said if you have a bag, keep the bag in the back and come back, leave here. No books, no bags. चलेगा, पेंसिल है. दिस विल डू, दिस विल डू. नो बैग्स, नो बुक्स, नो स्टडी गाइड्स, एवरीथिंग ऑन द बैक. बिनती है, हॉल विच कोई नहीं आएगा. पैसा जी,
2: सर्कल
1: कर. So guys, now listen everybody. 13 and above, मैं दस रहा. So here, the three columns. If you are the winner, you can choose three prizes. The three scenarios, you are the winner. You are the winner and you got more than 85% marks, which means you passed with flying colors. Then you can choose one of the prizes on that column, iPhone 14. एक मिनट रुको. Less than 85, more than 90%, sorry. The first column is more than 90%. You can use get the latest iPhone or the laptop or the cash prize, or I want to donate back to Gurumat Crash Course. Second preference, 85 to 90% marks are AI. So you choose kar sakde ho, iPhone 16e, actually it's 17e, laptop, cash prize, or I want to donate back. You have to circle one thing in every column, okay? So you don't know what your percentage will be. You might be the winner, you might be 85%, you might be 80%. So depending on where you stand, you will get the prize. ठीक है? मेरा नू पेपर दो जी, 17 एंड अबव नू. अंतरवीर जी, 17 एंड अबव पेपर एंड बबल शीट. ओके, बेनती है, हॉल च कोई पेरेंट्स नहीं रह सकते, ओनली टीचर्स हु आर टेकिंग ओरल एग्जाम्स. हाँ, मैं कर रहा हूं सर.
3: लिखनी
1: ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਕੋਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ।
0: ਟੀਚਰ
1: So Malar Singh, some kids need a pencil. Those who need a pencil, raise your hand. 9 to 12 years, those who need a pencil, raise your hand. Raise your hand high, he can't see it. Okay. He's bringing the pencil. ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਹੈ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ 9 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ 'ਚ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ 13 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਚ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਮੇਨ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡੋਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੱਸਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਇੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਓਰਲ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਚਾਚੇ ਮਾਮੇ ਤਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। So everybody write the cover sheet, fill the cover sheet with the price you want. ਮਲਾਰ ਸਿੰਘ ਬੱਚੇ ਰਹਿਣ ਡਰੈਸ ਕਰ ਦੇਖੋ। ਨੋਬਡੀ ਕੈਨ ਕਮ ਇਨਸਾਈਡ ਜੀ, ਨੋਬਡੀ। ਸੁਮਿਤ ਪਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ